उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: We'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: 8 a.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Monday, 26th of Safar al Muzaffar, August the 10th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Deputy Prime Minister and the Canadian Foreign Minister have telephonically exchanged views on regional situation, including the Makkah Joint Defence Agreement. The National Assembly Speaker says democratic institutions form the foundation of national stability and progress. Pakistan and Sri Lanka have expressed the commitment to identifying new avenues of cooperation in tourism, culture, education and institutional exchanges. In Azad Jammu and Kashmir, polling for the third phase for the Legislative Assembly elections is being held in Bagh and Haveli districts today.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
3: 101 FM.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए.
5: This is FM 101.
6: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
7: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
8: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
9: Entertainment, ho ya updates, yeh hai tumhari har mood ka dost.

0: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।
1: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
2: मेरे पापा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।

0: मैंने पाकिस्तान बनते देखा। पाकिस्तान इतनी आसानी से मार्ज़े वजूद में ना आया था। इसे बनाने के लिए मुसलमानाने हिंद ने आग और खून के कई दरिया उबूर किए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सदियों पुराने अपने आबाई इलाकों से हिजरत की थी। मौजूदा नस्ल को क़याम पाकिस्तान के लिए पेश की जाने वाली कुर्बानियों से आगाह करने के लिए ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान के आवाज़ खजानों में महफूज इंटरव्यूज से अख्ज़ किया गया प्रोग्राम पेश खिदमत है। मैंने पाकिस्तान बनते देखा। आज हम आपको तहरीक पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की कारकुन लेडी अब्दुल्ला हारून का इंटरव्यू सुनवाएंगे।
1: अब उन्होंने तो बहुत से बातें अपने तंजीम के लिए कहा था, लेकिन अफसोस है आजकल कुछ हम तंजीम के वराक उल्टा दे रहे हैं और इस वतन को हम जो वो कायद आज़म बड़े प्यार से और मोहब्बत से वो कहते थे, मेरी यही जब मेरे साथ वो मेरे रहते थे तो हमेशा यही कहते कि इस वतन को मैं इस कदर पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ कि शायद कोई अपने औलाद से भी करे। लेकिन इस वतन को जो उन्होंने फूले फले देखे तो वो खुश हो रहे हैं। अब कुछ हमारे दरमियान में कुछ ऐसी बातें हो गई है जो हम इस तंजीम के वर्क को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर हमें कुछ हुकूमत से चाहिए तो तंजीम से, खामोशी से। हम अपने पब्लिक को क्यों तकलीफ़ें दे रहे हैं? स्कूल के बच्चों ने क्या गुनाह करे हैं कि स्कूल को बंद कराने के वास्ते ये हो रहा है? हर एक इंसान अपने औलाद को नहीं मांगता है कि वो जाकर बेनाहक का जगरों में फंसे। हमारे बीच में अगर हमारे लीडर होशियार हैं तो उनको चाहिए कि डायरेक्ट अपने हुकूमत से वो लोग जो मांगते हैं वो चाहे करें, उनसे बात करें। इस प्रोसेशनों का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। शायद लोग ये कहेंगे कि मैं उनके तरफ नहीं हूँ, मैं हमेशा कौम के तरफ थी और हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि अगर कोई बस चला रहा है या मुल्क के अंदर फतरे मार रहा है या ख़राबी कर रहा है, वो हुकूमत का नहीं होता है, वो हमारा होता है, वो यानी हमारे पब्लिक का होता है। बसेस जो रन होती है वो बंद होते हैं, गरीबों के लिए जो कामों पर आते हैं उनको तकलीफ़ें होती है, इससे उनको कोई नतीजा नहीं मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता हुकूमत दरहम बरहम होएंगी तो मैं नहीं समझ सकती हूँ कि उनको क्या मिलेगी, उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए खामोशी से जो काम करना चाहिए वो करिए।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: दिस इज FM 101.

से मैं के मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी,

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
4: दिस इज FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: I love FM 101।
2: तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी।

0: This is FM 101.1.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: आप सुन रहे हैं FM 101।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बारास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे क्यों जी कोई शक है क्या?

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम और कुवैत के वजीर खारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान मकबूजा मशरकी बैतुल मुकद्दस समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिले पंजगोद में फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए बाग और हवेली अजला के 4 हलकों में पोलिंग जारी है। और यमन में आज हौसी मिलिशिया के साहिली शहर अलमुखा पर हमले में 7 अफराद हलाक हो गए।
1: This is FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबाउट।
3: One hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

दिल मुब्तला है कब से अजाबे सुकूत में, तो रब्बे नुतको लब है मुझे बोलना सिखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम लाहौर। वेलकम, खुशामदीद जी आयन एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियोज में। जी हाँ जनाब, आपका अपना FM 101। हमारे स्टूडियो से अब आप सुनेंगे प्रोग्राम लेडीज लाउंज मेरे यानी के साथ या रफीक के साथ। अब से लेकर ठीक 1 बजे तक रहेगा हमारा और आपका साथ इस शो में, जिसमें आप भी होंगे हमारे हम आवाज। सो जनाब, शो का आगाज करते हैं हमेशा की तरह वेदर अपडेट के साथ। लेट्स सी क्या चल रहा है वेदर रिपोर्ट में। Well, listeners, as per recorded at 11 a.m., it's 34 degrees Celsius on the scale right now. आज के दिन हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 36 डिग्रीज, जबकि कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्रीज रहने की उम्मीद की जा रही है। ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें, दैट इज 62% और हवा चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मोस्टली क्लाउडी आज का वेदर है, लेकिन जनाब हब्स बहुत ज्यादा है, अर्ली मॉर्निंग हब्स बहुत ज्यादा है। सो आप सबसे कहेंगे टेक केयर, अपना वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक ज्यादा से ज्यादा रखिए, फोकस कीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर।

ले जनाब आगाज की तरफ बढ़े हैं। पहला ट्रैक आप लोगों की समातों की नजर, हम एक हैं, ये सुनते हैं, वापस आते हैं आपके साथ, बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से, हमारे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, दैट इज अराउंड द कॉर्नर। और ढेर सारी बातें, उसके लिए आपको रहना है हमारे साथ साथ, स्टिक अराउंड, दिस इज FM 101 रेडियो पाकिस्तान।

Alright, listeners, we're back again. सफर में रास्ते में जो लोग हमें सुन रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आपसे कहेंगे हैव सेफ वे, दाएं बाएं आगे पीछे जहां तक आपकी नजर जाए, नजर को घुमा लीजिए, इस बात के इत्मीनान कर लीजिए कि आप ठीक जा रहे हैं और आपके आसपास के लोग भी ठीक जा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक्सीडेंट अक्सर दूसरों की गलती से होते हैं, सो हमें खुद भी बहुत देखभाल के ड्राइव करनी होती है और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होता है कि कौन क्या कर रहा है। और जनाब, बात कर रहे थे हम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, दैट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आज हो चुकी है 10 अगस्त और ठीक 3 दिन बाद हम मना रहे होंगे अपना यौम आजादी। सो इस यौम आजादी, जब आप आजादी मनाएं, आप अपने घरों को सजाएं और परचम अपने घरों की छतों पर लहराएं, तो उस परचम के तकद्दस का भी खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम एक दिन की सेलिब्रेशन के बाद अपनी जो जिम्मेदारी है वो भूल जाते हैं। याद रखिए कि पाकिस्तानी परचम की तकद्दस का बाकायदा हमारे आईन में जिक्र है और हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम इसको अपने घरों में, अपनी छतों पर लहराते हैं, तो हमने इसको बर वक्त वापस उतारना भी होता है। सो जनाब, ये मैसेज है हमारा आज के दिन आपके नाम। FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से लेडीज लाउंज में मैं आपके साथ आपकी आरजे सादिया रफीक। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, 04-2111-0101 इज द नंबर। ऑफर कॉल्स और आपकी लाइव कॉल्स दोनों शामिल करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा जनाब, अपने टेक्स्ट मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं 4471 पर। अपने फ़ोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए 101L, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेजिए 4

4.1 पर। सो जनाब, एक और मेरा फेवरेट मिली नगमा हम शामिल करने जा रहे हैं प्रोग्राम में से, सुनते हैं, वापस आते हैं, स्टिक अराउंड, दिस इज एफएम 101। आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे, आज हम शो में क्या बात करने जा रहे हैं।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: आप सुन रहे हैं FM 101।

0: All right, listeners, we're back again. Ladies Lounge, FM 101 Radio Pakistan, Lahore se aap sun rahe hain. Mujhe kehte hain Satya Rafiq. और जनाब आज हम बात कर रहे हैं घर के हवाले से, घर के कामों के हवाले से. और ख्वातीन की बात नहीं होगी, आज सबकी बात होगी. जितने जितने लोग घरों में रहते हैं ना, आज उन सबकी बात होगी. और हम आपसे पूछेंगे कि घर का ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. सो लेट्स सी कि कौन कितना इंटरेस्ट रखता है घर के कामों में, कौन कितना हेल्प आउट करता है घर के कामों में. तो आपने हमें बताना है कि जनाब अपने घर का ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छा करते हैं, कोई नहीं कर सकता आपकी तरह, या चलें आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, कोई और ना करे तो आप कर सकते हैं आराम से. 04211000101 थोड़ी देर में हम आपकी ऑफर कॉल्स लेंगे, आपसे बात करेंगे. सो कीप डायलिंग. टेक्स्ट मैसेजेस भी आप हमें भेजते रहिए. सो जनाब यूं ही ख्याल आया कि जिंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है, भागम भाग. हम एक ऐसी लाइफस्टाइल में आ चुके हैं कि जहाँ सुबह शाम का कुछ पता नहीं चलता, हर बंदा बहुत मसरूफ़ है. और अब अगर हम ख्वातीन की बात करें तो ख्वातीन की भी एक बड़ी तादाद बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है, बिज़ी है. घर के साथ साथ वर्क लोड्स भी हैं उन पे, ऑफिस में भी काम करती हैं और स्कूल्स में भी जाती हैं, टीचिंग भी करती हैं. इसके अलावा एक फुल टाइम जॉब होती है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं और ख़ास तौर पर आज के दौर के बच्चों के साथ जो बहुत ही हाइपर एक्टिव किस्म के बच्चे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंगेज किया हुआ है माँ को. तो ऐसे में एक हेल्पिंग हैंड होना और घर के हर बंदे का थोड़ा बहुत घर के कामों में ताक होना बहुत ज़रूरी है. लाइक अगर हम कुकिंग की बात करें तो हमारी सोसाइटी में इसको एक जेंडर रोल बनाया गया है कि ख्वातीन का काम है कुकिंग करना, जबकि ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो इसको एक बेसिक लाइफ स्किल के तौर पर अपनाया जाता है. और हर इंसान का ये मानना है कि खाना जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है. सो हर इंसान को जिसको जिसके लिए खाना ज़रूरी है, उसे खाना बनाना आना भी ज़रूरी है. सो मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे मर्द हजरात हैं जिन्हें मैंने देखा भी है काम करते हुए, हेल्प आउट करते हुए घर की ख्वातीन को, या कम से कम अपने शौक के लिए ही. बहुत से लोग होते हैं जिनको शौक होता है तो वो शौक के खातिर किचन में रहते हैं. और इसी तरह से घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं. सो आप भी सोचिए आज अपने वाले से, अपनी ज़ात के वाले से गौर कीजिए और हमें बताइए कि घर का ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सो जनाब राइट नाउ हम बढ़ रहे हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रैक के जाने.
1: आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जाओ.
0: एंजॉय, स्टिक अराउंड, दिस इज एफएम 101.

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

लेकिन अब इतना तो एंटरटेनिंग बीजीएम है हमारा कि अगर दो मिनट बजता भी रहे तो कोई बोर नहीं होता होगा एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है. आपको कैसा लगता है आप मुझे बता सकते हैं. ऑफर कॉल्स आपकी हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में. अभी ऑफर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद उस्मान, ऑल द वे फ्रॉम शाहदरा टाउन हमें सुना करते हैं, सुना करते थे. आज आफ्टर लॉन्ग उनसे बात हुई, सो उन्होंने मुझे कहा पहचाना नहीं पहचाना. मैंने कहा बिल्कुल पहचाना, क्यों नहीं पहचाना. और थैंक यू सो मच. मतलब मैंने लास्ट शो में भी यही बात की थी, आज फिर वही कहूँगी कि लौट कर आने पे जब आप लोग हमें वहीं के वहीं उसी तरह से मिलते हैं और बहुत वेलकम करते हैं तो हमें ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है. कहते हैं ना अंदर से खुशी होती है. सो बहुत शुक्रिया. टॉपिक के वाले से मैंने बात की, मैंने कहा घर का कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत शौक से कर लेते हैं और बहुत एक्सपर्ट है जिसमें. उन्होंने कहा कि घर में जितने मैं बहुत ज़िम्मेदार बंदा समझा जाता हूँ, तो घर के जो इंतज़ामी उमूर हैं, इवन घर के घर में कोई इवेंट हो या फैमिली का कोई इवेंट हो तो उसमें मैं बहुत पेश होता हूँ. सो मैं मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेता हूँ घर के चीज़ों की, कामों की. वाओ, दैट्स नाइस. हर बंदे का अपना एक रोल होता है, अपना एक कह लीजिए घर के अंदर एक जगह होती है ना. सो आप बताइए घर का ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम जिसमें आप घर वालों को हेल्प आउट कर देते हैं, उनकी टेंशन खत्म कर देते हैं जनाब.

मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारियां हम सबकी अपनी अपनी जगह पे होती हैं और वो हम निभाते रहते हैं, एक रूटीन में हमारी लाइफ चल रही होती है। लेकिन जो घर है, जो घर के काम है, जो घर वाले हैं, उन लोगों के साथ एसोसिएटेड होना और उनको हेल्प आउट करना, ये बहुत कम हो गया है और बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ इसलिए कि लोगों और लोगों की काम में मदद हो जाए या घर का निज़ाम एक अच्छे तरीके से चलता रहे, कभी कभार ऐसा होता है ना कि जिसकी ड्यूटी होती है, जिसके ज़िम्मे हमने लगाया होता है, वो कहीं इंगेज होता है तो उसकी जगह भी हमें काम करना पड़ जाता है। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इससे, वो ये है कि इससे हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो घर का हमारा निज़ाम है, वो मजबूत होता है। उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं अगर हम घर के तमाम कामों में इंगेज रहते हैं, उनके साथ हम नो हाउ रखते हैं, हमें खबर होती है कि जनाब क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ हम हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, यू नो, एज अ सिस्टम। हम मैं बात कर रही हूँ एज अ फैमिली सिस्टम, जो चीज़ें हम में अच्छी हैं, मैं अगर कंपेयर करूँ वेस्ट से, तो सबसे अच्छी चीज़ हम में हमारा ख़ानदानी निज़ाम ही है, जो हम एक एज अ फैमिली जुड़ के एक दूसरे के साथ रहते हैं। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बाहर तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत वीक है। घर के कामों के साथ जो है, घर में इंटरेस्ट लेकर, घर वालों में इंटरेस्ट लेकर हम अपनी जो फैमिली सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं बेसिकली। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इतना, आपका क्या है, आप भी मुझे बता सकते हैं।

सो जनाब, नेक्स्ट सॉन्ग हमने प्ले करना है और कौन सा सॉन्ग प्ले करना है मैं यही सोच रही हूँ अभी। सो जनाब, लेट्स गो विद दिस वन। दिस टाइम दिस इज अली जफर अलोंग विद अताउल्लाह खान साहब। गेस करें।

So, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अब बीट म्यूजिक बैक टू बैक, सो आपका मूड लिफ्ट अप रहे. आप जहां भी जिस भी जगह फंसे हुए अपने कामों में, आई नो आज मंडे है, चिल करते रहे, एंजॉय करते रहे. कोई भी मुश्किल हमसे बड़ी नहीं है, हम सब कर सकते हैं. 11:40 on the dial right now, ladies lounge. आप सुन रहे हैं सादिया रफीक के साथ.

नहीं जनाब, लौट कर आ चुके आपके साथ एक बार फिर से 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन स्टूडियो से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज 11:45 ऑन द डायल राइट नाउ। बात कर रहे हैं घर के कामों के हवाले से, कौन कितना ताक है घर के कामों में और कितना हेल्प आउट करता है, आज का हमारा टॉपिक है। सो आई वुड से कि कुछ फेमिनिन टास्क के हवाले से भी बात कीजिए। अगर आप घर की खवातीन को किसी तरह से हेल्प आउट करते हैं, उनके कामों में उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो वो भी जरूर बताइए। That would be a plus for you. So, जीत जाएगा वो जो आज ये बताएगा मुझे कि वो किचन में कितनी हेल्प करता है, बच्चों को संभालने में कितनी हेल्प करता है। क्योंकि ये वो टास्क है जिनको हमने जेंडर रोल बना के सरासर खवातीन के सर पे डाल दिया है। And I just wish, I wish कि इसमें भी हम सब मिलजुल कर काम करें। और फिर अभी ताहिर साहब से हमारी बात हो रही थी, ऑल द वे फ्रॉम कसूर हमें सुन रहे हैं। कहते हैं कि इस टाइम कम ही सुनता हूँ, लेकिन आपको सुना तो दिल किया कि हम भी शो में शामिल हों, तो बहुत शुक्रिया जनाब, क्या कहने आपके दिल के। और उनका भी ये कहना है कि वो घर के सबसे जिम्मेदार बच्चे हैं। आई डोंट नो, सभी बहुत जिम्मेदार हैं, सारे जिम्मेदार आज हमारे शो में आ गए हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन जनाब उनका भी ये कहना है कि घर का कोई भी बाहर का काम हो, स्पेशली आने जाने का, चीज़ें लाने का, मेहमान नवाजी का, तो सबसे पहला नाम मेरा ही लिया जाता है घर में। और सिर्फ घर में नहीं, पूरे ख़ानदान में मेरी मशहूरी यही है कि मैं घर का काम बहुत अच्छे से भाग भाग के करता हूँ। सो आई नो ऐसे लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जनाब, घर में भी और पूरी फैमिली में भी। और ऐसे बच्चे को बड़ी ही तारीफ़ी नज़रों से देखा जाता है कि जिसको आप जब जो काम कहें बोतल के जिन की तरह बजा लाए और उफ न करे, चू चा न करे। और जहाँ पे सब टाल रहे हो ना कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता, वो बच्चा हमेशा कुर्बानी दे देता है। ऐसा एक बच्चा हर घर में होता है और उसको घर का छोटा कहते हैं। वो जितना मर्जी बड़ा हो, बेशक सबसे बड़ा हो, लेकिन वो घर का छोटा होता है। एक बहुत मजे की बात याद आ गई मुझे। सो आई रिमेम्बर मेरी यूनिवर्सिटी डेज में हमारे एक टीचर थे जो हमेशा घर, जो जितने क्लासरूम से बाहर के काम होते थे, कोई चीज लेकर आनी है, कोई चीज किसी को देकर आनी है ना, तो वो मुझसे कहा करते थे, नहीं नहीं जनाब, मैं सीआर नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा लाइक फाइक बच्ची नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो हमेशा मुझे पॉइंट आउट करके कहते थे कि आप जाएं। सो जनाब हम तो हमारे क्लास फेलोज से भी सबसे रहा ना गया, तो एक ने किसी दिन पूछ ही लिया कि सर आप हमेशा सादिया को भेजते, इसकी क्या वजह है? तो क्या ही खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगे कि ये मुझे क्लास में सबसे छोटी लगती है, तो घर में सबसे छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा काम कहे जाते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ। सो जनाब हम भी छोटे रहे हैं, कभी अपनी क्लास के छोटे रहे हैं। एनी हाउ कीप डायलिंग 042-111-0101। और फिर आपकी कॉल्स जो हैं वो हम शामिल कर रहे हैं शो में, और आपसे पूछ रहे हैं कि घर का कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप ताक हैं, एक्सपर्ट हैं, आपसे बेहतर वो काम कोई नहीं कर सकता। डबल 4-7-1 पे आप लोगों के मैसेजेस भी हम तक पहुंचते हैं जनाब। अपने फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए 101L, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेजिए उसको 4471 पर।

ए डर ना जा, कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ साथ, सुनते रहिए एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान। और हमें बताइए घर का कौन सा है ऐसा काम जो आप बहुत अच्छे से करते हैं। और हम घरेलू टास्क की बात कर रहे हैं, जना आवाज सरासर घर के कामों की बात कर रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है जनाब, फारूकाबाद, ऑल द वे फ्रॉम फारूकाबाद हमें सुनते हैं। और उनका ये कहना है कि घर के कामों में, ख़ास तौर पे जो घर में सफाई सुथराई होती है, उसमें मैं बहुत हेल्प आउट करता हूँ घर की ख़वातीन को। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। और यकीन करें बहुत थका देने वाला काम होता है ये घर की सफाई करना, पूरे घर को चमकाना छोटी बात नहीं है। सो सल्यूट टू यू जी, बड़े बड़े काम करते हैं आप। और एक बात मजे की बात की, उन्होंने कहा कि जो मेरा एक जिम्मेदारी थी ना अर्ली मॉर्निंग घर का कचरा जो है उसको डंप करना, उसको ठिकाने लगाना, वो काम जो है अब मेरा बहुत आसान हो गया है, वो मुझे करना ही नहीं पड़ता क्योंकि अब घरों से जो है वो पिक हो जाता है। सुथरा पंजाब उस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो वेल डन टू द टीम ऑफ सुथरा पंजाब, बहुत तारीफें सुनने को मिलती हैं। क्या कहने गाइस, लगे रहिए, अपना किरदार अदा करते रहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और यही चीज हमें बहुत प्रोमिनेंट भी करती है, इवन एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पंजाब को खासतौर पे जहाँ हम बैठे हैं लाहौर को बहुत एग्जेम्पलरी कहा जाता है सफाई के मामले में, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है सुथरा पंजाब के वर्कर्स का। एंड आई वुड से कि हम सबको भी अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, और जितना भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसे हमें बहुत जिम्मेदारी से उसकी सही जगह पहुंचाना चाहिए। एनी हाउ जनाब, इट्स 11:55 ऑन द डायल राइट नाउ, और अभी कुछ देर में हमें बढ़ना है न्यूज ब्रेक की जानिब। न्यूज ब्रेक के बाद आपको वापस ज्वाइन करते हैं, उससे पहले एक ट्रैक आपको सुनवा रहे हैं, आई होप आप एंजॉय करेंगे। सो एन अपबीट ट्रैक by none other than Great Khan from Pakistan. Yes, this is Nusrat Fateh Ali Khan Saab.

जी हाँ जनाब, एक बार फिर से हम आपके साथ FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज, मुझे कहते हैं साथिया रफीक। आपको क्या कहते हैं आप हमें बता सकते हैं, डायल कीजिए 04221100101। आपकी ऑफर कॉल्स हम शामिल कर रहे थे प्रोग्राम में, अब से कुछ ही देर में लाइव कॉल्स का सिलसिला भी करते हैं शुरू। आपसे करते हैं दूबदू बात और आपसे जानते हैं कि ऐसे कौन से हैं काम जिनमें आप हैं बहुत ताक, और कितने हेल्पफुल हैं जनाब आप अपनी फैमिली के लिए। मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ ऑफर मौजूद थे और माह आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक दे रहे थे जनाब हम सबको, आप सबको। और जनाब उनका ये कहना है कि जो हमारा मज़हब है और इंसानियत और मुल्क, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे जिसको प्यार नहीं वो शायद ज़िंदगी का भी हक़ नहीं अदा करता। सो बिल्कुल ठीक कहा, और हमारा मुल्क और ये आज़ादी जो हमें हासिल है इसका हक हम वाकई में अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये प्लेट में रख के मिली है, पैदा होते ही मिली है, हमने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की है। लेकिन इन सब चीज़ों का, अपने मुल्क का, अपनी सरजमीन का, और यहाँ पे जो जो हमें चीज़ें मुयस्सर हैं उन सब का एहसास तब होता है जब आप एक पैर, सिर्फ एक पैर मुल्क की सरहद से बाहर रखते हैं, तो है कि नहीं। सो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, और एहसास होता है कि जो अपने मुल्क में अपनी सरहदों के अंदर जो लिबर्टी हमें हासिल है वो सबसे बड़ी नेमत है जिंदगी की। सो कयामत तक आबाद रहने वाला है हमारा मुल्क, मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह। और हम जहाँ भी हैं, जिस जिस जगह पे हैं, मौजूद हैं, जिस जिस रोल में अपना काम कर रहे हैं, निभाते रहें और अपने मुल्क के लिए काम करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। सो राइट नाउ जनाब एक और ट्रैक आप लोगों को सुनवाते हैं और उसके बाद आप लोगों को वापस ज्वाइन करते हैं। और क्या प्ले करने जा रही हूँ मैं जनाब, ये भी एक सरप्राइज है। आज जितने सॉन्ग्स मैंने सोचे थे जहन में, जितनी प्लेलिस्ट मैंने अपने दिमाग में बनाई थी, वो सारी बिखर चुकी है। और रेंडमली जो सॉन्ग्स मेरे सामने आ रहे हैं और मुझे क्लिक कर रहे हैं मेरे माइंड को, मैं वो प्ले करती जा रही हूँ। सो जनाब दिस इज़ द सरप्राइज मेरे लिए स्पेशली, आप लोगों के लिए तो क्या ही होगा। सो ऐसा ही कोई अपबीट ट्रैक अगर आप भी सुनना चाहते हैं हमारे मूड के मुताबिक, प्रोग्राम के मूड के मुताबिक, जरूर बताइए। कल की मुझे जाने इस दिल का हाल क्या होगा। ननदन हदीका कयानी।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए। सोना यूरिया ग्रैनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

All right, listeners, we're back again. जी हाँ जनाब, लौट कर आ चुके आपके साथ एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज, मुझे कहते हैं सादिया रफीक। और जनाब, घर के कामों की आज हम बात कर रहे हैं कि आप घर के कौन से ऐसे काम हैं जो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, इंस्पिरेशन कहना चाहिए, जो मुझे सुनने को मिल रही है। और फिर हमारे साथ खान बाबा मौजूद थे, डिफेंस से हमें सुन रहे हैं और उनका ये कहना है कि पढ़ा लिखा सब कुछ किया और हुनर भी अपने हाथों में पैदा किया। मैं घर का हर काम अपने हाथ से कर सकता हूँ, जिसके लिए हम मोहताज होते हैं ना लोगों के, कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, फलां को बुलाएं, फलां को बुलाएं और फिर उनको हम भारी फीसें अदा करें, खर्चे अलग अदा करें। तो उनका ये कहना है कि मुझे इतने काम घर के सब आते हैं कि मैं चंद रुपयों में खुद ही अपने घर के सारे मामला सीधे कर लेता हूँ। सो उनका ये मैसेज है हमारे सब लिसनर्स के नाम एंड स्पेशली जो हमारी यूथ है उनके नाम, कि पढ़ें लिखें लेकिन सुस्त न बने और हुनर भी अपने हाथों में लेकर आए। घर के कामों में ही सही आप हेल्प करें। बेहुनर न बने। और ये सही बात है, जो हमारी जनरेशन थी लास्ट, पिछली जनरेशन की बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स, सो वो लोग इसी तरह से एक्टिव रहते थे। आई डोंट नो व्हाई, कैसे कैसे कर लेते थे वो, कि अपनी तमाम मसरूफियात भी निभा लेनी है और उसके बाद घर के बीसियों काम जिनके लिए आज हम छोटे से छोटे काम के लिए एक बंदा ढूंढ रहे होते हैं ना, कि फलां को बुलाए, वो एक्सपर्ट बंदा लेकर आए, वो ये काम करेगा, वो सारे काम खुद अपने हाथों से कर लेते थे। लेकिन ओवर द टाइम वो सारे काम एक्सपर्ट्स को शिफ्ट होते गए और घर के खर्चे बढ़ते गए। ये सच है, ये बहुत बड़ा सच है। घर के किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस

0: किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का आपने एक स्विच चेंज करना हो ना, तो वो स्विच चेंज करने के आपको पैसे चार्ज कर लेगा 400-500 आराम से। आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन बुला के लाएं, है कि नहीं? और वो इतना सादा सा, इतना आम सा काम होता है, कोई भी कर सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए बस। सो जनाब, 100 बातों की बात। तो ये वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, ये हम सबको लेनी चाहिए। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं मैं जिनके हवाले से बात करूं, तो हम लोगों ने एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ के लिए अपना ली है। ये अपने बच्चों को हम लोगों ने शेल्टर दे दिया कि ओहो, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो हमने उनको इतना पैम्पर कर दिया कि उनका जिम्मा, उनके जिम्मे सिर्फ पढ़ना रह गया। घर के तमाम कामों से, तमाम जिम्मेदारियों से उन्होंने एक तरह से शेल्टर ले लिया हुआ कि जना भी हमारा काम नहीं है। जबकि ये वो स्किल्स हैं जिनको अगर हम देखें चाइनीज एजुकेशन सिस्टम या जापानीज एजुकेशन सिस्टम में, ये सारी चीजें वो अपने प्री स्कूल बच्चों को सिखा रहे होते हैं। इमेजिन। सो मुझे नहीं पता हम कौन से महाराजे और शहजादे शहजादियां पाल रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें जोक अपार्ट, ये बहुत सीरियस बात है कि हमें अपने बच्चों को स्किलफुल बनाना है। जैसे अभी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, या हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, हम बच्चों को कंप्यूटर लिटरेट बनाने की बात करते हैं, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हमने उनको होम स्किल्स जो हैं वो भी सारी सिखानी है और उनको उसमें भी एक्सपर्ट बनाना है, ताकि वो छोटे से छोटे काम के लिए मोहताज ना हो, किसी की राह ना देखते रहें कि वो आएगा, फलां बंदा आएगा तो वो काम करेगा। थैंक यू सो वेरी मच खान बाबा, आप शामिल हुए प्रोग्राम में और आपने बहुत अच्छी बात की। अपने घर का ऐसा कौन सा काम है जनाब आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं? मोहम्मद तारिक साहब से जैसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो घर के सारे काम कर लेते हैं। उनकी मिसेज हयात नहीं है और उनकी बच्चियां जब भी घर आती हैं तो उनके लिए खाना शाना हर चीज़ वो अपने हाथों से बनाते हैं। उन्होंने बड़ी मज़े की बात बताई मुझे कि वो बिरयानी और गुड़ वाले चावल दोनों बहुत अच्छे बनाते हैं जनाब, क्या कहने। सो जनाब, एक कॉलर हमारे साथ है, लेट्स सी कौन है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपका जिक्र हो रहा था जनाब, अभी मैं बिरयानी और गुड़ वाले चावल की बात कर रहे थे।
1: अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। असल में सादिया, बच्चों को जो है ना सिखाना चाहिए सब कुछ। मैं समझता हूँ कि डिग्री तो महज तलीमी अखराजात की रसीद होती है।
0: जी जी।
1: इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और उसके तर्ज अमल से जाहिर होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तर्ज अमल जो है इंसान की परवरिश को जाहिर करता है और इंसान की गुफ्तगू उसकी तरबियत को जाहिर करती है।
0: बिल्कुल सही हो गया तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहेंगे?
1: अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। कहना यही चाहूँगा कि कामयाब और अच्छी जिंदगी के लिए सबसे अहम जो चीज है ना, खुद में खुद से हिम्मत पैदा करना।
0: बिल्कुल सही।
1: अपने अंदर इंसान के उद्दम होना चाहिए। जो पुराने लोग थे ना, बड़े लोग, हम वो सबसे पहले तो मुअल्लिम की रिस्पेक्ट करते थे और बड़ों का अदब करते थे। मुअल्लिम की रिस्पेक्ट जो है ना, तालीम के मियार को बुलंद करती।
0: बिल्कुल सही।
1: तो बड़ों, बच्चों में जो है अब सबसे पहले तो अदब मुंतकिल करना चाहिए। मुहिब्बुल वतनी और इखलाकियात की मुंतकिली लाजमी है नई जनरेशन के लिए। बहुत
0: बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बचा कहा। बहुत शुक्रिया तारिक साहब।
1: अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ने के बांध पे सदा जीवे सोना पाकिस्तान।
0: बिल्कुल सही कहा जनाब, बादब बामुराद। बरसों नहीं सदियों पुराना मुहावरा है और बिल्कुल सही है। वो कहते हैं अदब जो है पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ऑलराइट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम वनवान के सभी सुनने वालों को मेरे दिल से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सादिया जी?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हंसता मुस्कुराता सलाम, माशाल्लाह।
2: देखिए मेरी मुस्कुराहट से पता चल गया ना मैं कैसी हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे जनाब, हंसता खिलखिलाता।
2: मैं हमेशा हर वक्त जो ना ऐसे हंसती मुस्कुराती रहती हूँ घर में भी।
0: क्या फॉर्मूला क्या है इसका?
2: और आ जाए आपके टॉपिक की तरफ, शादिया जी बच्चों को भी खास करके जो बेटियां बेटे होते हैं ना उनको भी हर काम सिखाना चाहिए, उन्हें हर काम आना चाहिए क्योंकि ये उनके उनके लिए आगे चल के काम आने वाले होते हैं सब काम।
0: बिल्कुल,
2: तो ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों को काम, बच्चा जब खाना खाता है चाहे पीता उसको को बर्तन, बेटे ये बर्तन उठा कर किचन में छोड़ के ऐसे ऐसी चीजें जो होती हैं उनको बच्चों को सिखानी चाहिए और बच्चों को करना चाहिए। ये नहीं कि गम फैला के तो बच्चे छोड़ छाड़ के चले जाएं खा पी के। तो बच्चों को हर काम जो है ना ये सिखाना चाहिए बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो हो जाए फिर कोई मौसम के हवाले से। हाँ मुझे याद आ गया, फरी भी कोशिश कर रही होंगी कॉल मिलाने की, तारा और तारिक भाई कुवैत में रह रहे हैं उनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, और अनिला जी को और रूबीना जद्दी इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो कौन सा गाना आप मौसम के हवाले से प्ले करेंगी?
0: मैं अभी ढूंढ के करती हूँ। तो एक नया सॉन्ग आया आज, वो सुनवाती हूँ आपको।
2: आप अगर हाँ नया करें ठीक है, आप जो प्ले करोगी, लेकिन मुझे तो मेहदी हसन खान साहब के गाए पुराने गाने जैसे कि जाने जा तू जो कहे गाऊं मैं गीत में, फिर चाहिए क्या सामने तू जो रहे।
0: बिल्कुल सही, और फिर चाहिए क्या
2: ऐसे गाने, और चांदनी मूवी के गाना तेरी याद आ गई हम खुशी में डल गए, एक चिराग क्या जला
0: सौ चिराग जल गए,
2: ऐसे गाने जो है ना बहुत सारे हैं जो, क्योंकि अब मैं पूरे गाने नहीं आपको सुना सकती बता सकती। मुझे सदाबहार गाने बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, आज भी सुने जाएं तो बिल्कुल वो नहीं लगते हैं।
0: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। जनाब आवाज ही पहचान है जनाब, है ना, ऐसी बात है कि नहीं। एनीवे जनाब एक और सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ, और मौसम के हवाले से बात हुई तो जनाब मौसम के हवाले से भी ज़रूर कुछ शामिल करते हैं अपने शो में। इट्स ओवरऑल क्लाउडी आज के दिन, और अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो जनाब टेम्परेचर जो है एज़ पर रिकॉर्डेड एट 12 PM इट्स 35 डिग्री सेल्सियस ऑन द स्केल। आज के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इट्स गोना हिट 36 डिग्रीज, और मिनिमम टेम्परेचर जो है 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हवा चल रही है 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, हब्स है, सो टेक केयर, और जनाब हमारे साथ साथ रहिए, सुनते रहिए FM 101 रेडियो पाकिस्तान। और जनाब अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ट्रैक, एंड दिस वन इज यस, दिस वन इज ठगियां, ज़ैन ज़ुहेब एंड क्रतुल एंड बलोच।

0: जी जनाब, सानू चन मैया तेरी ठगियां ने मारिया। सो हर तरह के लोग जिंदगी में मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन पे हम एतबार तो कर लेते हैं लेकिन काबिल एतबार होते नहीं है। सो जनाब बी केयरफुल, हर बंदा काबिल एतबार नहीं होता। और जनाब लोग भी कुछ ऐसी सी नेचर के होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत जल्द एतबार कर लेते हैं, बातों में आ जाते हैं जनाब। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं, जिन्होंने जिंदगी से सबक हासिल किए होते हैं। एनी हो जनाब, आपने ज़िंदगी से क्या सबक हासिल किया है और आपने ख़ुद को कितना पॉलिश किया है, घर के कौन से काम ऐसे हैं जब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आज का हमारा टॉपिक हम आपसे पूछ रहे हैं और आप हमें बता भी रहे हैं जनाब। 04221100101 इज आर नंबर और राइट नाउ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम FM 101 रेडियो पाकिस्तान से अभी आपको वेलकम खुशामदी जी आया नू अहलन सहलन मरहबा बली करी आया नू ते बखैर आ गए, कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक ठाक, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने कॉल मिला लिए किसी शो में।
1: मैं हमारा बेग बात कर रही हूँ, वेलकम बैक, आपको बड़े अच्छे बात सुन के बहुत अच्छा लगा।
0: सेम हेयर हमारा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से दोबारा बात करके। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से?
1: मैं टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ।
0: लेकिन सिग्नेचर काम होता है ना एक सफाया फ्रिज का कि किचन का, ओवरऑल
1: घर पूरे घर का सफाया।
0: ठीक हो गया जनाब।
1: और फ्रिज में स्वीट डिश कोई सी भी पड़ी हो, चॉकलेट मिठाई स्वीट जो भी हो ना, उसका सफाया होता है मेरे। और अगर दही बल्ले पड़े हो तो फिर फ्रिज से दोस्ती, वरना 10 दिन भी पड़ी रहे फ्रिज मैंने हाथ नहीं लगाना।
0: अच्छा, तो घर अच्छे से सफाई कर लेती हैं वैसे घर की?
1: बहुत अच्छे से।
0: जाले शाले भी उतार लेती हैं?
1: जाले क्या, मैं तुसी
0: स्पाइडर्स भी निकाल
1: वो बंदियों की दुलवाइयां भी करवा लेती कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मजाक की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कर लेती हूँ।
0: क्या कहने। और बाहर के काम, शॉपिंग कैसे कर लेती?
1: शॉपिंग मैं इतनी खास, मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है, लेकिन शॉपिंग मैं जाती जरूर हूँ, लेकिन जो साथ वाला होता है ना उसकी पसंद की मैं कोशिश करती हूँ कि चीज लूँ। मैं कोई बाहर वगैरह इतना जाती आती नहीं हूँ ना, तो फिर मुझे इतना पता नहीं होता कि क्या चीज इन है क्या नहीं है, तो फिर मैं मशवरा ले लेती हूँ कि ये चीज मेरे लिए बेस्ट रहेगी कि नहीं।
0: वाह, सही हो गया। यानी दुकान का सफाया नहीं आपको आता है ना?
1: दुकान का सफाया ये है कि अगर 4000 की चीज है ना, वो मैं 1500 में ले आती हूँ।
0: हाँ, बार्गेनिंग मास्टर तो है, क्या कहने।
1: लेकिन ये है कि मशवरा मैं करती हूँ साथ वाले के साथ के भाई मुझे बता दो, मुझे गाइड कर दो कि ये चीज अच्छी है या नहीं।
0: चले, बहुत शुक्रिया हमारा, बहुत शुक्रिया आप शो में शामिल।
1: आपसे बात करके और इतने अच्छे बाद आप आई 3-4 साल के बाद, तो बहुत मजा आया आपको सुन के भी और आपसे बात करके भी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, बेस्ट विशेस बहुत सारी और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ओके,
0: अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जनाब, ऑलराइट। सो जनाब, सफाई में एक्सपर्ट हैं हमारा, और घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो ख्वातीन करती हैं और वो कर करके इतनी एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं कि नो वन कैन बीट देम। और ये जो लोग कह रहे होते हैं ना कि ये तो कोई काम ही नहीं है, करके तो दिखाएं। एक और कॉलर है जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी, सादिया साहब, आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान बट सलमाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ।
0: जी, सलमान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम फोन ही नहीं मिल रहा, मैंने कहा शायद कोई खराबी है फोन लाइन में।
0: अरे नहीं नहीं कोई खराबी नहीं है।
2: वाला प्रोग्राम आपका अच्छा है और घर के काम सारे करते हैं आपकी आंटी के साथ सारे, और ज्यादातर मेरा ये जो फोन है ना जिस दिन का मैं रिटायर हुआ ना ऑन एयर नहीं मिलता ऑफ एयर ही मिलता है। मैंने कहा शायद रिटायर होने की वजह रिटायर बंदों का ऑफ एयर मिलता है।
0: FM 101 ने भी रिटायर कर दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं
2: नहीं नहीं जब मैं ना अक्सर जो आरजे है ना मेरा फोन उठाते हैं वो कहते हैं आप ऑफ एयर है। मैंने कहा अच्छा मैं रिटायर हो गए शायद इसलिए ऑफ एयर मिलता है। अब मैं ऑन एयर।
0: अब आप ऑन एयर है। ऑन एयर बताएं कि किचन में कौन कौन से काम कर लेते हैं?
2: मैं सारे ऐसी जबरदस्त साफ करता हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह काम वालियाँ नहीं कर सकती जैसे मैं करता हूँ। प्लेटें साफ ग्लास हर चीज और जो चीजें बिकती हैं उन्हें समेट देता हूँ सारी। स्टोर साफ कर देता हूँ घर के सारे स्टोर जो है उनकी सारी चीजें बाहर निकाल के जो फालतू है ने लोगों को दे दिए या फेंक दी जो चंद जरूरत की उन्हें रख ली। इस तरह सारे मैं बैठ नहीं सकता। मैं हालांकि एसी में बैठा होता हूँ फिर भी मुझे कोई ना कोई काम याद आता है उसके फिर चल पड़ता हूँ फिर आगे लेटता हूँ फिर उठ पड़ता हूँ। यानी कि सारा दिन काम दिन में आते हैं काम करते रहते हूँ। तो अभी जो आपकी आंटी किचन में जर्दा बना रही है मैं इधर एक कॉरिडोर है वहाँ ठंडी हवा आ रही दोनों आपने तो सुबह डरा दी है गर्मी गर्मी
0: बहुत गर्मी थी मैं जब आई हूँ बहुत हब्स था। अभी का वेदर कैसा बताएं आप?
2: ये लाहौर में ही हूँ मैं लेकिन गर्मी तो है। मैं बाहर नहीं जाता रिटायर हूँ बच्चे जाते हैं मैं तो बस ये एक मेरा है कॉरिडोर सा है उसमें बैठा हूँ दोनों तरफ से हवा आ रही है ऊपर पंखा भी लगा हुआ है सामने आपकी आंटी जर्दा बना रही है बड़ा जबरदस्त
0: बिल्कुल ठीक।
2: वो ना मीठे की शकीन है वैसे नहीं मेरे पास ज्यादा बैठती लेकिन जब मैं मीठे की बात करूँ ना रात का 1:30 बजा हो तो मुझे वो रेसिपी बताना शुरू कर देगी जी इतने बादाम डलेंगे इतनी काजू डलेगा ये डलेगा बस मीठे की बातें करें फिर वो जरा खुश हो जाती है। मीठा उन्हें मीठे की शकीन है जरा
0: बिल्कुल
2: तो
0: सही।
2: आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है तो बड़ी अच्छी बातें पाकिस्तान जिंदाबाद
0: चौदह
2: दफ्तार है बच्चे बड़े खुशियां मना रहे हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: मेरी दो पोतियां हैं छोटी छोटी
0: तो
2: वो एक परसों बैठी 2 साल की है मैंने आइसक्रीम खा रही थी मैंने कहा बेटा मुझे भी दो कहती दादा आपका गला खराब हो जाएगा मैंने कहा 2 साल की है अभी
0: डॉक्टर तो पूरे है ना
2: हाँ जी
0: मैंने कहा डॉक्टर पूरे हैं
2: हाँ मुझे भी दो बेटा मुझे नहीं आपको गला खराब हो जाएगा फिर फीवर हो जाएगा फिर मैं इंजेक्शन लगा दूंगी आपको मैं तो आप रोज पीर वाले दिन
0: जी जी बिल्कुल मंडे को 11 to 1 बहुत
2: ठीक है शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आइए जनाब जनाब आप कौन सा ऐसा काम है जो बहुत अच्छे से कर लेते हैं? वंडर वुमन का एक सेगमेंट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब अपने शो में। अभी कुछ ही देर में मैं आपसे जिक्र करूंगी आज की वंडर वुमन का किसका हम आपसे इंट्रो करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जनाब एक और ट्रैक मैंने क्यों कर रखा है आप लोगों के लिए इस ट्रैक को शामिल करते हैं शो में और उसके बाद हम आपसे जनाब बात भी करते हैं अभी लाइव कॉल्स आपकी मज़ीद भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। उसके लिए आपको रहना है हमारे साथ साथ और डायल करते रहना है 04211100101। सो अभी शमीमा आपी से बात हुई और मौसम के हवाले से कह रही थी कि कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं तो जनाब मौसम के हवाले से मैंने उनसे वादा किया था कि हम सज्जाद अली को प्ले करेंगे नया सॉन्ग आया वो प्ले करूंगी मैंने कहा था। सो जनाब दिस इज़ गोना बी अ सरप्राइज फॉर सो मेनी ऑफ अस। बिल्कुल रीसेंट ट्रैक मैं आप लोगों को सुनवा रही हूँ विद द टाइटल बादल।

0: फिर तुम आकर लौट न जाना वफा निभाना। सजाद अली की आवाज बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक हम सुन रहे थे मौसम के हवाले से। सो जना वफा निभाते रहिए अपने अपनों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उनका हाथ बटाते रहिए जनाब घर के कामों में, घर के मामलात को संभालने में, जिम्मेदारियां उठाने में। अपना शोल्डर भी पेश कीजिए, अपना कंधा भी पेश कीजिए जनाब। लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज की वंडर वेमेन की। सो हमने सोचा कि एक सेगमेंट आपके साथ ऐसा भी शेयर किया जाए जिसमें हम भी कुछ इंस्पिरेशन लें उन लोगों से कि जिन्होंने मेहनत की और किसी न किसी मकाम पर पहुंचे। आज की हमारी वंडर वेमेन है आयशा फारूक साहिबा। आयशा फारूक एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट हैं, बल्कि पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया, ट्रेनिंग ली और एज अ फाइटर पायलट खुद को मनवाया। हासलपुर बहावलपुर से ताल्लुक है हमारे पाकिस्तान के इस मायानाज होनहार बेटी का। सुजनाब 2013 वो साल था कि जिस साल उन्होंने फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट होने का एजाज हासिल किया, फाइनल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और इस वक्त वो अपने मिशंस के लिए J7 फाइटर जेट जो है उसको उड़ाती हैं अपने दीगर जो उनके मेल कलीग्स हैं, 24 मेल कलीग्स के साथ वो 20th स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं, और किसी भी जंगी सूरत हाल में वो एज अ फाइटर पायलट उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जनाब उनके साथ साथ इस वक्त 6 और फीमेल फाइटर पायलट्स पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा के पास ये क्वालिफिकेशन है कि वो कम्बैट कर सकती हैं अलोंग द बॉर्डर्स। और सिंस 2000 वो उन 19 ख्वातीन में शामिल हैं, टोटल 19 ख्वातीन में जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज पायलट सर्व कर रही हैं। सो वी सैल्यूट यू आयशा फारूक फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी ऑफ अस। यू आर अ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। सो जनाब वंडर वेमेन के तस्करे के साथ ही मुझे ब्लिंक करती हुई हमारी लाइन दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम। और लाइन कट गई। सो बहुत दुख होता है, आई नो, एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन होती है जनाब। इतनी देर आप मिलाते रहे, कॉल कोशिश करते रहे, और जब कॉल पिक की जाए तो कॉल ड्रॉप हो जाए। लेकिन जनाब ये टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और ये चलते रहते हैं, क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
0: जी हम ठीक ठाक। कौन हमारे साथ?
1: तो मैं तो मोहम्मद शहजाद शाहबाग से जी बात कर रहा हूँ जी।
0: शहजाद साहब कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआएं माशाल्लाह, बहुत दिन बाद आप आए हैं मेरा ख्याल है।
0: बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत महीनों बाद, बहुत सालों बाद।
1: अच्छा चलो, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे। बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा शो जी।
0: बहुत शुक्रिया। कौन से काम करते हैं घर के?
1: घर के काम जी देखो, संडे वाले दिन मैं तो कपड़े धोता हूँ जी घर के सारे, मंडे वाले दिन बर्तन धोता हूँ, मंडे वाले दिन ये दो दिन ये मुझसे बहुत सख्त काम लेते हैं जी घर वाले। तो
0: मंडे को सिर्फ आप बर्तन धोते हैं और आप कह रहे हैं इतना सख्त काम लेते हैं। आपको पता है बर्तन तो सुबह दोपहर शाम धोने होते हैं और 24 घंटे धोने होते हैं और हर दिन धोने होते हैं।
1: नहीं, ये मेरी एक टाइम ड्यूटी लगी है सुबह के टाइम,
0: तो बिल्कुल सख्त ड्यूटी नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ। वो थोड़ा मुश्किल काम है, वो मैं अग्री करती हूँ।
1: चलो अल्लाह ताला इसी तरह जी घर के निजाम जो है ना, घर के काम करने चाहिए, जो काम नजर आए उसको करना चाहिए, और जो हम बाद में किसी का काम करते हैं वो भी हमें ईमानदारी ध्यान के साथ करना चाहिए जी।
0: बिल्कुल
1: काम
0: सही,
1: को लेट नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत मेहरबानी सबको। मेरा सलाम, अभी वसीम भाई आएंगे, हमारे आरजे बड़े प्यारे हैं, इनको भी सलाम, जितने भी आरजे सबको मेरा सलाम, सब बहन भाइयों को।
0: बहुत शुक्रिया जी। ऑलराइट जनाब, अल्लाह हाफिज़। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और देखिए जनाब कपड़े धोते हैं वो ही कोई छोटा काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एंड स्पेशली जब वीकली आप धो रहे हो तो एक बहुत बड़ा ढेर मुंतजर होता है और सारा दिन निकल जाता है, ऐसा ही है। सो टू ऑल द ब्यूटिफुल पीपल आई वुड से कि ये लोग वो लोग हैं जिनको ना मैं मेहनती कहना चाहूँगी, ना मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत जो है वो हार्ड वर्किंग है, उससे भी ज़्यादा इन लोगों में जो चीज़ है ना जिसकी वजह से ये काम करते हैं वो एहसास है इनके दिलों में। ये बहुत खूबसूरत लोग हैं बेसिकली, जो हम किसी जो लोग लोगों का बर्डन शेयर करना जानते हैं ना, वो लोग तबीयतन बहुत हसास और बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। सो आई ट्रूली केयर फॉर एवरी वन ऑफ़ यू, ईच वन ऑफ यू, कि जो घर के मामलात में सपोर्ट करते हैं घर वालों को, उनको हेल्प आउट करते हैं, ये हर एक के बस का काम नहीं है। तो जनाब घर के कौन से ऐसे काम हैं जिसमें आप हेल्प आउट करते हैं अपने घर वालों को, आप हमें बता रहे हैं। 04211100101 इज़ द नंबर।

सो जनाब एक ट्रैक है, मैं ये चाह रही हूँ थोड़ा सा ये ट्रैक सुन लें और उसके बाद वाइंड अप करें अपने शो को। आपकी लाइव कॉल्स भी हम एक से दो जरूर शामिल करेंगे शो में, सो स्टिक अराउंड एंड कीप डायलिंग 0422111001। दिस इज कलाबाज दिल फ्रॉम द मूवी लाहौर से आ गए।

0: राइट कर आवाज दिल और हम भी कल आवाजियों ही के टाइम पे आ चुके ऑन द टाइम और मुसलसल हमारी जो लाइन है वो ब्लिंक कर रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है?
0: मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कौन हमारे साथ?
1: जी जी, हमारे साथ मोहम्मद मलूक शाह आजरा।
0: मोहम्मद मलूक शाह, बहुत प्यारा नाम है जनाब। आपका क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? जल्दी से बात कीजिएगा।
1: ये अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। टॉपिक मैंने नहीं सुना, मैं वैसे बात करता हूँ। अल्लाह पाक आप सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, फेसबुक पे देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपकी पूरी टीम को मेरा सलाम हो।
0: वालेकुम अस्सलाम, मलूक शाह हमारे साथ मौजूद जनाब। और टॉपिक नहीं सुना जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, खामोशी। अस्सलाम वालेकुम, लास्ट कॉलर हमारे आज के मोस्ट प्रोबेबली। कौन हमारे साथ? कैसे हैं?
2: ठीक ठाक, आज तो डेट ऑफ हीरो हो गया
0: आज। आज आप लास्ट कॉलर है और लास्ट बात जल्दी जल्दी कर ले।
2: बस मैं आ गया, आज तो हीरो हो गया निकल कर। मैं 1 बजे ही लाइन लगा हुआ,
0: कॉल नहीं मिली।
2: बहुत मुश्किल कॉल आज मिली है। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, तो सोचान वाले बहुत ज्यादा ने लाइन लगी होगी नंबर पे ही ना। छोटा मोटा हों कहते आपू जी तुम बस फोन करो असं खुद ही कर लें।
0: बिल्कुल सही, चले
2: बच्चे ने हुण। बहुत शुक्रिया, बहुत सुनने वाले आते सब आते थे। ढेर दुआवा टाइम को दिए रब रखा दे। अल्लाह बेली
0: अल्लाह बेली अल्लाह बेली जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। Alright, जनाब, घर के कौन से ऐसे काम है जिसमें आप साथ देते हैं अपने घर वालों का? I'm so sorry for everyone of you जो अभी भी ट्राई कर रहे हैं और शो में शामिल होना चाहते हैं। आपसे बता दें जनाब आपको कि इट्स ऑलरेडी 12:56 ऑन द डायल और हमारे जाने का वक्त हो चुका है। आज के लास्ट कॉलर हमारे हनीफ साहब थे। सो जाते जाते यही पैगाम आप सबके नाम आए मुझसे कि हमें घर के क्या बाहर के भी क्या, अपने घर के लिए, अपने घर के निज़ाम के लिए हर उस काम में हिस्सा लेना चाहिए जिसमें हम ले सकते हैं। और टू ऑल द मदर्स एंड फादर्स जिनके पास अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी वो तरबियत कर सकते हैं, जिनकी मिजाज का वो हिस्सा बना सकते हैं, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए घर के कामों में दिलचस्पी लेना और छोटे छोटे टास्क उनको दिया कीजिए ताकि वो खुद आदि होते जाएँ ओवर द टाइम। क्योंकि घर को चलाना, घर के लिए कमाना, ये सारे वो काम है जो हम सबको मिलकर करने हैं, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। सो जितना हम एक दूसरे का बर्डन शेयर करेंगे उतने ही हम स्ट्रांग होंगे, उतने ही मजबूत होंगे, उतने ही निखरेंगे और एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान के तौर पर बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी और इन रिश्तों से भी आगे एक अच्छे शहरी बनकर हम अपने मुल्क को कौम की नुमाइंदगी करेंगे। यही पैगाम आज के दिन आप सबके नाम इस उम्मीद इस ख्वाहिश के साथ आपसे इजाजत चाहते कि आपसे होगी फिर मुलाकात नेक्स्ट मंडे इन द सेम शो लेडीज लाउंज में। उस वक्त तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए जहाँ भी जिस भी हाल में। जस्ट प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड से ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर, फी अमानिल्लाह।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: This is FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

बड़ा घोड़ा। अब ये तान जो है ना, तो ये कहने के लिए पहले 10 साल क्लासिकल की मेहनत होनी चाहिए, वरना इंसान खाक हो जाए। और कितना बड़ा इम्तिहान है। और वो मुझे ऐसे ऐसे गाने गवाते थे, ऐसी धुन दे देते थे कि आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तो इस परख से, इस इम्तिहान से निकलिए, तब हम आपको मलिका तरन्नुम कहेंगे।

0: Hi, this is FM 101.
1: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: This is FM
3: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा,
1: तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: 101 FM.
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Friha Hassan. The headlines first. Prime Minister has commended overseas Pakistanis for their consistent positive contribution to stability and growth of national economy. Deputy Prime Minister has telephonically shared contours of Makkah Joint Defence Agreement with President of Democratic Republic of Congo and former President of Guinea-Bissau. Polling for third phase of Azad Jammu and Kashmir Legislative Assembly elections is underway in four constituencies of Bagh and Haveli districts. And 9th death anniversary of renowned philanthropist Ruth Fow is being observed today.
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं बच्चे बूढ़े खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इस्तनाब करें नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें रेडियो टीवी अखबारात फोन एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें हिफाजत सिर्फ एहतियात में
3: This is FM 101, where your spirit is set free.
4: 101 FM.
5: मूसलाधार बारिश और شدید ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें दीवारों छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त कर

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और सरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम वजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन तो मानो।

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लाज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुनते रहिए एफएम।
2: ऑफ कैबिनेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज काबीना की मीटिंग के लिए तशरीफ लाए। हालिया दिनों में बास बड़े अहम वाक़ात हुए। जुमे के दिन जिस तरह आप जानते हैं मक्कतुल मुकरमा में सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के प्रेसिडेंट जनाब तय्यब अर्दोगान और मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे उस माहिदे के ऊपर दस्तखत किए। इससे पहले आप जानते हैं पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई माहिदा हुआ था तो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दहाइयों से अरेंजमेंट्स मौजूद थे और पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान की अफवाज को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी थी कि वो सऊदी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर जो दुनिया के इंतहाई होलीस्ट प्लेसेस हैं मक्कतुल मुकरमा मदीनतुल मुनव्वरा उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के आवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। पिछले साल अल्लाह के फजल करम से इस अरेंजमेंट को हमने एक ऑफिशियल इसको किया ताकि एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ। इस जुमे को ये उसकी एक और एक्सटेंशन है कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर एंटायरली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस फॉर पीस ट्रैंक्विलिटी एंड प्रोग्रेस इन द रीजन ना सिर्फ इन तीन ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए। ये मैं समझता हूँ कि ये माहिदा इंतहाई बाइस तकवीत है। इस हवाले से मैं यकीनन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को और ख़ुसूसी तौर पर मैं फील्ड मार्शल

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बारास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above 101

0: 6 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has directed the authorities concerned to accelerate the implementation of Federal Board of Revenue reforms. The Deputy Prime Minister has extended warm felicitations to the nation on the signing of the Makkah Joint Defence Agreement by Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. The Minister for Religious Affairs has reiterated the government's commitment to providing world-class facilities to Pakistani pilgrims. The advisor to the Prime Minister on Political Affairs says the Pakistan Muslim League Nawaz will form the government in Azad Jammu and Kashmir with about a two-thirds majority. Security forces have killed 5 terrorists in Panjgur. The All Parties Hurriyat Conference has expressed grave concern over the grim situation in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir due to illegal detentions of Kashmiris. And now the news in detail. The Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif has directed to further accelerate the implementation of the Federal Board of Revenue reforms. He was chairing a weekly review meeting in Islamabad on the ongoing reforms in the Federal Board of Revenue. The Prime Minister welcomed the growing confidence of the business community in the ongoing tax reforms. He directed the Chairman, Federal Board of Revenue and senior officers to stay in Karachi as well as Lahore for 2 days every month. The Prime Minister directed the Federal Board of Revenue to accelerate enforcement measures to achieve the prescribed revenue target. He appreciated FBR's action against illegal cigarette manufacturing factories in Chakwal and Soabi. The Prime Minister directed timely completion of the proposed faceless system for inland revenue. He said the complete rollout of the faceless system be ensured by 2027.
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
3: 101 FM.
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है. तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है. इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें. दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है. इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं اور خطرہ بن سکتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
0: دس از ایف ایم 101.1۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
1: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1۔

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: दिस इज FM 101.1।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: 101 FM।
1: वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर दस्तखत किए जाने पर कौम को दिली मुबारकबाद दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पंचगोर में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के बायस इलाके की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR इस्लाहात पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात के हवाले से इस्लामाबाद में हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत करते हुए दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी बरादरी के जारी टैक्स इस्लाहात पर बढ़ते हुए इत्मीनान का खैर मकदम किया। उन्होंने चेयरमैन FBR और सीनियर अफसरान को हर माह कराची के साथ लाहौर में भी 2 रोज क्याम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने FBR को हिदायत की कि मुकर्रा रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट के इकदाम तेज किए जाएं। उन्होंने FBR की जानिब से चकवाल और सवाबी में सिगरेट साजी के गैर कानूनी कारखानों के खिलाफ इकदाम को सराहा।
0: Station for Civilization 101 Hits FM।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
0: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइस तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: सुनते रहिए FM 101. We will be back after this short commercial break. Stay with us.
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
8: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
9: सुनते रहिए FM 101 101।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम भजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का फरमाए। आमीन। तो मानो

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

0: फोन नंबर 04237727160 यानी 0423772710 मोबाइल नंबर है 03004142608 यानी 03004142608 ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com
1: पेन प्रो पता तुहानू मिल गया है हुण तुसी आप भी सुलेमान साहब नू मिल सकते हो अपनी बीमारी बारे मशवरा भी कर सकते हो पेन प्रो इहदे नाल ही अपनी भैण साइमा नू इजाजत देवो अगले प्रोग्राम विच इंशाल्लाह फिर मुलाकात होवेगी उस वेले तिकर रब रखा

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए, अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के फ़रोग में मददगार साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म ने आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्हें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। पंजाब हुकूमत आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए अमली इकदाम कर रही है। पाकिस्तान ने कीनिया के शहर नैरोबी में 21वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 7वीं बार।
1: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
2: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: This is FM 101.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

मैं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान

0: वो एक्चुअली
1: अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी, वो लौटाने आया हूँ।
3: शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
4: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, नहीं रह रहे
5: हम भाग नहीं सकते।
6: उफ, क्या मेरी जान, शादी से कॉम्प्रोमाइज।
7: छुट्टी नहीं मिली मुझे।
8: मैं तैयार हुई हूँ आपके लिए, साड़ी पहन।
9: नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, I can't do this anymore, मुझसे ये शादी नहीं चल रही।
10: मुझे वापस घर बुला ले प्लीज।
11: बार बार एक ही
12: चीज, you know what,
13: मुझे

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

सुखी घर के साथ मैं हूँ माहरुख हफीज। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियो से ये प्रोग्राम पेश कर रही हैं प्रोड्यूसर सिद्रा अहमद। बहनों कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि खैराफियत के साथ खुश पाश होंगी। बहनों मौसम में बरसात चल रहा है, बारिश तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब बारिश का पानी जहमत बन जाए तो परेशानी हो जाती है। बहनों ऐसे में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, घर से बाहर निकलते हुए ऐसे जूते पहन लेना कि जिनमें कीचड़ या पानी से गुजरना मुश्किल ना हो। बारिशों के मौसम में बिजली के तार और दीवारें भी गीली हो जाती हैं, सड़कों गलियों में खंभे भी गीले हो जाते हैं। बहनों ऐसे में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर बच्चों पर नज़र रखें कि वो गीले तार या खंभे को हर किस हाथ ना लगाएं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। बहनों एहतियात रखने से, ख्याल रखने से इंसान परेशानियों से महफूज रह सकता है, और हर पल दुआ भी होती है कि रब ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहनों हम सभी अपने अपने घर के हवाले से बहुत हसास होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारा घर सुकून और साफ सुथरा रहे। बहनों इसी तरह एक घर हम सबका, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान भी है, जो हम सबकी पहचान है, हमारी शान आन पान है। बहनों हम सब ने इसको भी साफ सुथरा रखना है, वतन की इज्जत पर आँच नहीं आने देना। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक जिम्मेदार शहरी की तरह पूरी दयानतदारी से अपने अपने फ़राइज अंजाम देने हैं। बहनों जश्न आज़ादी में चंद दिन रह गए हैं, इसीलिए इसको मनाने की तैयारियाँ भी जोश व खरोश से चल रही हैं। वतन है तो हम हैं। हमारी दुआ है कि ये पाक सरज़मीन

हजार से लेके 5 लाख तक की मालियत का हक मेहर मुकर्रर किया हुआ है, जो हमारी बहनों को पता होना चाहिए ताकि वे इसे बेहतर तौर पर फायदा उठा सके। हुकूमत पाकिस्तान ने जो तय किया हुआ है 50,000 से लेके 5 लाख तक का हक मेहर, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं और निकाह नामे में दर्ज हक मेहर की रकम में तब्दीली भी हो सकती है। इसका कोई एक बाज़ाब्ता कानूनी तरीकाकार तो नहीं है, लेकिन शादी के वक्त अगर फरीकैन निकाह नामे में दर्ज हक मेहर की रकम में कोई तब्दीली बाहमी रजामंदी से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और चूंकि ये एक हतमी कानूनी और शरई माहिदा होता है, तो इसमें इस तब्दीली के हवाले से कोई कानूनी और शरई नुकात ज़्यादा वाज़ह नहीं किए गए हैं। तो निकाह के बाद अगर कमी बेशी हो, शादी के बाद शौहर अगर अपनी मर्जी से या बीवी की रजामंदी से हक मेहर की रकम में अगर इजाफा करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन यक तरफा तौर पर या ज़बरदस्ती हक मेहर में कमी नहीं की जा सकती और वो फिर भी पाबंद ही होगा। तो ये तहरीरी तौर पर मुआहदा होगा और इसमें अगर इजाफा किया जाएगा तो इसे अदालत में साबित करने के लिए नया तहरीरी मुआहदा किया जाएगा और वो अदालत में पेश किया जाएगा और उस पर गवाहान के दस्तखत भी मौजूद होंगे, ताकि तलाक या खुला के सूरत में अदालत या सालसी कौंसिल हक मेहर की अदायगी के हवाले से सही फैसला कर सके और बीवी अपने मुकर्रर करदा हक को पा सके, क्योंकि वो उसका कानूनी हक है। तो शरई अदालत के फैसले में भी वफाकी शरई अदालत और हाई कोर्ट्स के वाज़ह अहकामात हैं हक मेहर के हवाले से कि ये शोहर का कानूनी और शरई फर्ज है कि वो अपनी बीवी को हक मेहर दे और उसको माफ़ ना करे, और वो माफ़ होता भी नहीं है। बाज़ खबर

0: फिर बेशुमार खवातीन जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी लहराया और वो इस जद्दोजहद के अंदर शामिल थी, तो एक हरावल दस्ता साबित हुई है जिनका नाम अब भी रोशन लफ्जों में हम लेते हैं। और हमने इसकी तरक्की के लिए दिल्ली ग्राफ्ट की तरक्की और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। क़ायद आज़म का अलामा इकबाल का एक ख्वाब था मुकम्मल करना है।
1: जश्न-ए- आज़ादी के हवाले से भी आपने मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के तासरात सुने। बहनों के लिए प्रोग्राम सुखी घर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है।

जी बहनों, वक्त के सफर में आपके प्रोग्राम का वक्त भी तमाम होने को है। प्रोग्राम के आगाज में बात हुई वतन की और अब इख्तितामी लम्हात में भी आइए ये अहद करते हैं कि हम अपने बच्चों में वो जज्बा हुबुल वतनी पैदा करें जो मुस्तकबिल में उन्हें पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी बना सके। और अब चलते चलते एक दानिश्वर की खूबसूरत बात आपकी समातों की नज़र। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना ने फरमाया, आज़ादी की नेमत जज्बा हुबुल वतनी और ईसार से मिलती है। इसी बात के साथ प्रोग्राम सुखी घर का वक्त अब खत्म होता है। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियो से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रही थी प्रोड्यूसर सिद्रा अहमद। अब अपनी मेज़बान माहरुख हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।